जी गुरु गरीब निवास यंत्रजामी सच्चे पातशाह जी महाराज साहिब कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सच्चे पातशाह जी महाराज तिना दे पावन स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे पावन अस्थाना दियाँ हाजरियाँ परदे गुरु कियाँ संगत वालों गुरबाणी के शब्द कीर्तन सत्कार करते हुए बेअंत माया अरदास कराइए पातशाह सतगुरु आप नाम जानी जन सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे ये रुकता दी नाम दी दाद खाज राज करनी।

बल्ले हरे सचिया सैदा सैदा बल्ले हरे तो दिया गे यारे दासे हमारी वायर तो दिया

जिना जिना हथा तो ए माया चली आ रही है। जानी जान सतगुरु संगता दिया शुभ मनोकामना पूर्ण करनिया घर दरास करने ना बाणी दी दात बख्शनी यात्रा सफ

0: फले गाज के जगा रख जावे सो निहाल हो जावे सत श्री अकाल गुरपुरे अकाल देव तेग फतेह प्रपंच खालसे दी दिना दिन चढ़दी कला रखनी सच्चे पातशाह जी महाराज।
1: गुरु प्यारी साध संगत जीओ ਹੁਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।

0: अपना जीवन सफला करो जी।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत

त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत शतरधारी शत्रिपत शैल रूप शेतनाथ शौनी कर छाया बर शत्रिपत गाइया विश्वनाथ विश्वंपर वेदनाथ बाला कर बाजीगर बानतारी बंदन बताइया

राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याइया। बेसुमार अथाह अगनत अतुल

लगावही अपनी अपनी भांत। अष्टपुत्र भैरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौशक अलाप।

मारू मस्त अंग में बारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौ खड़ औ बहुरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सो

मोदी अगुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ कांदरा कल्याणा अष्टपुत्र।

सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरयो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखेत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे गोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप फली बितन्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांग ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गोट गजान के सुंदत हिंसत ही है राज हजारे भूत भवे के भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नहान दया दम दाम सुसंजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण देव कुरान जमीन जमान सबान के पिख है पौना हार जति जत धार सभ सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सन्नाह दुर्जान दलेंगे भारी घुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बडे बर यार विचार है सार की धार बछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भवेख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैथल मै पल ही पल मै सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जगत सत्र सवय अपलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नाराज बजौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान जातक दान अनेक स्वंबर साज परेंगे ब्रह्म महेश्वर संसची पद अंत फसे जम फांस परेंगे जे नर श्रीपद के प्रस है भगते नर फेर न देह धरेंगे कहाँ भयो जो दो लोचन बूंद के बैठ रहे हो पक ध्यान लगायो नाद फिरयो लिय साध समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखे आन सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो वैस बितायो साज कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले बाहन पूज धर्यो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर आवाजी दिशा मह काहू पछाह कुशीस निवायो को उपतान को पूजत है पस को अमृतान को पूजन धायो कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो प्रसाद तोमर छंद

अभे खरी अदो खरी अद्व खरी अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सोतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम।

तेज ज्यों तेज में अतेज जस तेज लीन ताही तयो बज सब ताही मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित मुंह में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बटे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार बोझ हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हरे मडी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पज हारे।

न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न बर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखंग अभेखंग जो निस्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वैया विनाशी न जातं न बातं न रूपं न रंगे नमो वाद भंगे नमो वाद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फिर मिटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वैया विनाशी परे अंग परापरं पूरण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग कादंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छय विभूते न जन्मंग न मरणंग न बरणंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाधे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नियच्छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभयनर्भिखादं अछेदं अभेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं बालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न ब्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्धभिर्दं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे युक्तं गच्छयाद विक्त यथाभि विभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मन्त्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न शर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद

कहूं राज सिंह कहूं राज तन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम वाणी कहूं गोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं गाव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तोर की पारसी हूं कहूं पहलवी वस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाग्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारं कहूं यंत्र नीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेच भाख्या कहूं बेदरी तं कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी कहूं गारुडू गूढ़ कथा कहानी।

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप अनासन तुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जगाद करता सदीव हरता सनाद आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतपान जय जात पात ने शत्रु मित्र जय नेह गेह नेह चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात ने भरम बेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं बर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो नांग अक्षय स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उजरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तत् पावत न पार कई उर्द बाह देशन भ्रमंत कई उर्द मध पावक जुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई गोक काप कथत कतेब कई अगन होत्र कई बौन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साक पत्र भच नहीं तदप देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई करत बांत भांतन विचार नहीं नैकता सपा यत्न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्न होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपता सपा यत्न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कहे सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास समृत उचार कई भजत एक भग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पंग प्रजंत नहीं तदपता सपा यत्न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दुष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भोग टू सर्व

जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेत स्वरूप भेद व्यंगन खंड भूत छेद छंगन काल पाल दयाल स्वंग जे ठट्यंग मेरा काश भुआंग अनखंड मंड प्रचंड नरंजे रच्यंग देव देव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमाजे रच्यंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जे रच्यंग छत्री छत्र चितंग जे राग न रेख न रोग भणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंडह ते ब्रह्मंड रचेउ दस चार करी नवखंड सचेउ रज ताम्बद तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रुबिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल करार त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज से तज उद भुजंग ये देव देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मातन भ्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुवंग जे जंपह किन्नर जाच जुआंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाजर थातिक पांत गणंग भूत भविख भवान तुआंग जय अंडज से तज जेर रजंग रज भूमा काज पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो वल फूल कली भू मेरा काज निवासितंग रज रोजय का दीर्शन्त्र पितंग।

भूता छूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेद भेद अछेद नरंग जे चार चतुर्देश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जे पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत भेद पुराण सभा जे भेद कतेव अनंत कह जय भूत भूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंधा दो मुख ताप तप कई कल्पन लो तब ताप करै नहि नैक कृपा नित पान परै जय फोकट धर्म सवै तज है एक चित्त कृपा नित को जप है ते आप सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति।

भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा वेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए नराग रंग रूप है न रोग राग रेक है अदोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेक है न दात मात जात है न पात चिहन वर्ण है अदेग सेक भेक है सदीव विश्वभरण है विश्वम्बर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है अद्वैग है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठोर में विशेख आन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अपुराण नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आदि देव है कहो सु कैसे पाइये जिमी जमान के बिगे समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाट है न घाट बाट होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए न ने न देह है न गेह है न जात है न

न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अचेत है अभेद है न रंक है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है गरीब है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीध है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न

अछेद छेद है सदा, गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलि अरूप राग रंग है। न द्वैक है न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है न बाद है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम अभिज है सदा, छिज तेज मानिए, न आद है न व्याद है, अगाध रूप लेखिए, दोख है अदाग है, अच्छे प्रताप देखिए, न कर्म है न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न यंत्र है न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है न चित्र है, न चित्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है न क्रोध है, न लोभ मोहकार है, न आद है न गाद है, न व्याद को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपी नराधपि करंत सेव है सदा, सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा, अगस्त आद जे बटे तपस्तपि विशेखी है, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखी है, अगाध आद देव की अनाद बात मानी है, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानी है, सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह।

सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्वदयाल देख, चक्र चिन्ह न वर्ण जाको जात पात न भेख, रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल, दीन बंध दयाल स्वामी याद देव पाल, दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार, वरण चिह न चक्र जाको चक्र चिह न कार, जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन, दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुर प्रमाथ, दुष्ट हर्ता सृष्ट कर्ता जगत में जय गाथ, भूत भव भव।

पार। भूमका जले थले मेहमानिय जय नाम, दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम। दुष्ट हरना श्रेष्ठ।

मित्र बालक शत्रु बालक दीन दयाल मुकांद अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतन सर्व शासन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूम का जले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेन्द्र उपेन्द्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव ना पावे शिव रुद्र ओमुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भय मुख चार आद अंत न मत जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीय कलयुग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबै नि पाइये तह पार नारद आदिक भेद व्यासिक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबै कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके

तब जगदीश को कहो सकल विद तैं दोहरा, को आत्मा स्वरूप है कहां श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जी तब कह मरण।

कहो सुसम का सो कह दम को कहां कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहां रंग राजा कवन हरक सो कह कवन को रोगी रागी कवन कहो तत् मोह तवन दोहरा कवन सृष्ट को पुष्ट है कहां सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है।

सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे का भ्रू कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकनी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय हुसी सब ठौर निवासन बाये पताल आकाशन ले संकटे निवारण धम उदारण तेज प्रकर खण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापण जबत जिवे जय जय हुसी सहस्र प्रकर खण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी धुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुरखंडन सुम्भर चक्रत निसुम्भ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सूज विसूजन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद अनाद का दूरधंग घंट का विराजे रुण झुन बाजे भ्रम भाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिग भाजे सुकूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिझे सब न बजे रूह रणंग जय जय होसी मखा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद कुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर प्रत्ये धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मतंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते बिरलाज विहंडन चचुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होसी मखा सुर मर्दन विश्व विदुंसन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे अंतर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खंड सर्वर वरखंड दुष्ट प्रतरखंड वितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना है दोष प्रदा है अर्ध लगा है दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय उसी मखा सुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली जोत जतीली तुंद मते अष्टायत चमकण शस्त्र जमगण दामिन दमगण आद वृते डुक डुकी दमंगे बाघ बबंके भुजा फरंगे शुद्ध गते जय जय होसी मखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान विहंडन दोष प्रचंड।

मित्र दो एक सार या छह स्वरूप अवचल पार जानी न जाय जह रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेग कहे नाम ताज है कवन जात जे शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जे चक्र चिन्ह नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग विरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुदंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग छिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंतन दुरंत जह नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जह पैर पार दीना न दोग दहता उदार कई गोट इंद्र जह पान हार कई गोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जह नेत नेत निस दिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बारक नीमन गारे पछ पसुनक नाक नरादिव सर्व समय सबको प्रतपारे पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दो कंधे गत है पर देत न हारे दाहत है दुख दुखन कौ दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूरण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज विलोक तराज करो गुरुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविक भवान बनाए देवा देव खपे अंग बेव न भेव लख्यो भ्रम सियो भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सिंह किन श्री पद मापत पाए आद अनंत अगात द्वैक सो भूत भविक भवान अभय है अंत विहीन नाथ माप दाग दुख छिद्र छय है लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पद मापत ये है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह पीहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छय है जान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्री पदमा पतल है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बहु भांत बचावे शत्रु नेक चलावत गावत उतन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दे कर पाप संभूहन भेटन पावे और की बात कहा कहे तो सौ सौ बेट ही के पट बीच बचावे जाच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब है सरण्यावे पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुज या सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हु मिल गायो वेद कतेव न भेद लगयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब बजहारे भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे याद अनाद अगाद द्वेक द्वेक जप्यो तिन्हि कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेष सबोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्य के चलैया मा हसतरण के साल है। दान के देवैया मा हमान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया अविरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न बार बाव हिंगुला हिमल जाव गुर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना की तेग बांध अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मर टाम गेल तेरी मान सो तपस्या कर दीढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रूह के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीस न्यावे तिब्बती दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोहे दायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्वधन धाम फल फूल स्यो फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काऊ पे नदीन सादा दीन।

सखाई हर कीरत हमरे रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृपता सह मिल।

काहेरे मंचत वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरया मेरे माधव जी सत संगत मिले।

आख बखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ध्यावह तुद जी से जन जग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी जन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी जन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जन हर ध्याया।

ती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तव चरनन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सभय तुम घावो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सभय कर तारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन को आज संगरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो वर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दै मुझे उबरिया मरन काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस धुज जूं करी यह रच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा पप धरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रगासा सकल काल का किया तमासा

जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकण को सेव गुण सुख दियो, सत्रण को पल मोह बद कियो। घट घट के

बारी सर्व ठौर मोह हो सुहाई दुष्ट दोख ते लेहो पचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विक सकल देह को हरता दुष्ट दोखी अन को छाय करता श्री अवधूजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशद फल पावे सोई दुख न तिसै ब्यापत कोई अड़ल।

कह छाओ पई सम सत्रह सैस भणी जय अर्ध सैस फुन तीन कह जय भादौ सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

जग माहे जो तह प्रभु को ध्याए हैं अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है विचार किशनाहे जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे दोहरा जब आयस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुना कब बाच दोहरा ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय पंथ चले तब जगत में जब

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त ने स्वर्ग बास रघुबर कर सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुनै अर गावे दुख पाप तहन कट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छुए सकै न कोई सम सतरै सैस पचावन हाड वधी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौ लहु सुधारा दोहरा।

परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, जितने भी आप माई भाई गुरु कलगीधर पातशाह सरबंस दानी शमशेर बहादुर महान सूरबीर अमृत के दाते साहेबे कमाल गुरु कलगीधर पातशाह दे चरणा विच आपां जुड़ मिल बैठे हाँ। उन्हां दे अनन प्यारे भाई दया सिंह जी की याद मनाउण वास्ते ओ प्यारे भाई दया सिंह जी जिहड़े ता जिंदगी गुरु कलगीधर पातशाह जी का परछावां बन के रहे। आपां सिफत सलाह करनी है गुरु कलगीधर पातशाह जी दी, और साध संगत जदों जिथे फुलां दी गल कीती जावे फिर खुशबू अपने आप ही नाल आ जाया करदी है। जेकर गुरु कलगीधर पातशाह फुल सन, भाई दया सिंह जी उन्हां दी खुशबू सन, ता जिंदगी उन्होंने अपनी गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं समर्पित कर दित्ती। देखो ना भाई पारो जुलका परमहंस जिन्हां नूं एक खिताब दूसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज उन्होंने बख्शिया, उन्हां दी अंश वंश विचों प्यारे भाई दया सिंह जी

जुगार के उनकन बिटियो जाए सुचाव के जीविया लगा प्रण सलो ओती जाई सटिया किसे लगा दो अन्न देवता पानी देवता बैस